0: ma da shuwa shakhwa monala sukata do tiz pima ti ma ngobe nya bo zazdumia awali swakwe ni mazawa za nama nzagunge shakhwa re ka ti ma ngobe nya abu chupula shakhwa chupula ti ma ngobe nya bo tala ti wa me nya zagun dange sota zagun da she ni be ne tsini tsi be ne ba ti ma tsi ya he he yo ha de wa me chi lu ngai gatili yido shakhwa bo maza swakata ni wa zai mukiyo mbenya aswa chupula da mari mong mbenya go kada sinam tan ne ya thung sinam tan ar banga thung kala kyo gu shi ni sinam tan go ma ye khu chu nge zu zu nge a ti ye nge a wo to yin wo ya wo pya gu gu a gu sha ye swa da ro e sha ma ge du ngu me nge zu he dang ya a wo gu sha le le ne ko ta ngu me nya ma za wa za ha bang ai a ti ma nga ngu me nya ne su mu ge ta ngu me nya so pya ma nge sha kho ba a za nya yu la wo he he yu nge आचा गोमेन्या छिरो एदिका अबेया वह मजा मव सजांगे सजम मना ए ग जगुन दबे छिरो उंगे खुजा
1: गादे मादे शवा नलाय पिगा मखयंग कोलाछु बक्कसु निमा नहु छमके निमा दिजामा माशुहुमा अवली जिसा आते मंगे शाखवा या महाविद्यालय फट स्मार्ट अरबंगे या फला अंक्रेतिमाई थुसुगु तिका जमा सोशिनी फला मंगे लाछुगे पोवा छमके निमा छुते छुनतेआ你们一块就在大门进来，说个是你弗拉玛，俺们三年收入，小伙伴，你们我别嘛，别在里我们边的，我们的小伙伴，买来不我缺个，就做对应的，一些图，一批字，买来讲啊，啊不加么了，拿出来嘛，不我缺个别个嘛，别个啊，啊不加么啊，啊不生啊，阿里边个，阿里嘛里边你是啊，我拿出比花个小伙伴，不我缺个我们边缺个的字嘛，我来缺的字嘛个，阿里嘛更我边要我对应多啷个。 为个体我们我们也一面施工嘛，面子面子大啊，哎，一年嘛快就在大嘛嘛丢了，一些一面是和做了做了哎，阿提讲啊，面是没得讲嘛，古白想哎，阿提嘛我们也一个，我那天子都在讲一面是我们也提讲啊，阿提嘛拿出个数啊，可就嘛拿到，别个面啊，阿提讲哎，拿出面子也嘛我们也小伙伴，他们让我们也不去嘛应该拿出，嘛过时的呢，个拿出过什么过什么帖子。 马瓜学过，夜里打个铁打嘛，我们也他妈也打不拿。那个夜里打个铁嘛，打过我婆学字体字嘛，连铁打我们呀，不过学过笔画的字嘛，铁打我们呀，阿姑们也可就嘛打个，个啊，阿里边哎，哎，干他妈个，俺们俺们边呀，说的是你弗拉班哎，小伙伴来比啊，俺那个看你哎。